0: गिलास तुम कुफा भी
1: निफितुंडाना फिरने इंसान या मिला फिउमानन मिला आद मिला फिएस

0: गिलास तुम काफी।
1: सूत सूत सानने रे जगल मध्य मंती तुम मत आकाश करन पिसले तुम सब तुम चला रे नाना का तीन नाना का काम रे ते तीन नाना के आनो ना फिक्री जानी जलू रिस्क के जान कों को रिस्क के जान को ये जन दे जान मंती तुम मत आकाश कर जान ये जन के रिस्क सान पा ना जब फिक्री जान मु उतन मान लेकिन फसल दे दिसाना को दे मना रखा ना सेमु जान ले फिते साना दे फा मना रखा ना तेंदे ए देमरा रे ना तब फिते सों तांग मिरी जाने सें जब दे दे
2: क्या ना काफी ना सु पफतारा कौन सा है ये ले फिर ना काफी ना जाने मार सुत सा उन अच्छा फसल ले तीनों रोप ये करने में क्या ना बुला चुना ये ना जाने
3: ए सुत सान ले वचने के ते मत आकाश क्या रा सुनना ला को ले सुत तुंग अते थी ए सेना वतर पे सुत जिस चीज में अफतला चां सुत सान से ले सुत सुत पे ना काफी ना टीम ना कर सारे तुंग अते ते वाला सा सीजम सो सच मोला ला सच के नहीं सेंच साजा मापा ये रेना जवे अंजा मानता नहीं मापता ना जरा के सेते ए तांज ना तंग तुंगा वाने
4: ना काफी ना सुत ले उल्ला ना दे तुंगचा Havana Diego nakane chiriara de vernane Diego ara kampanirino e te iteta Madagascar de sutun mitso san ie fankerezana hoazireo de mafinaritra ny ataonareo fa tena hoe makafitiko antilosy mamitsika ty izay tena hoe tsy manatsaly ty izany e dia tsy mitovy ny any ivelany fa manana ny antsika manokany tsika
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukuvavi.

0: आज तुमको वाभी
1: फिल विप वार्चा वोशारिया वेती वोचिन विपेन दायतुन फिवेलुमनाया चम निबुआना ते तो मुन्तान दंग विवार्चों वोशार्तुन वार्चों जोकच विपेन दायाएं दस्मांग में सिंग शाकी दफ्तिया वनुं फ़ाज़ाकना नाई जान में तुंग अंग्रेज़ का राजा निसांगे के नंग तो बीली अम गराब दावलिया कने संजय जान दाते नंबी शेफ़े ने फ़ियना नाई अंगत लंग नाई शक्ये ये इजाज़ जाने तो तुम वाज़ जान तो बीली तन नरी वम फार्चब दावल नाई अंगालं तुंग जुक दासिया जान नुन फनकाना इशकारा जेतान फजकाना यू दा आविद नाइजन गरा बराको कोल्टुरी टेलोरिव फमरुतना एंटुम टेटा नुन कमिशतांग इशतांगवा दासिलाफ नाइ दना जेसनाइ दिमानजातु जे दिमानजातु जान पु दंबुला स्लाफ शचिया उन तो बिले मरुतना एना सीशी दा उलम तना एतु सिविदेनि शचिया शमनांग फतुरनि आबुलु अनदे मांगन जुरनि एंगालन जाय ngang टेलोरिव शनांजु शाय मरारे ngang da voté zany midbokan jano lang arety nda sisy aminay tiagny agnaty volagninay zany kriza satria sisy atokona ndre raiky ay da sy mahazo mivelagna ka da gnanay tony zany da mifitaragna aminareo mitondra fanzakana ambony aby daholo gnagny aby na nkomine aminay tony distrika ziska ambony aby daholo gnagny mba isozovy analay aminjay aba mizaly ay tony tena mizaly da mifafatesana ny sisy aminay tony tiany da salama sara ny vatagnanay ny saignanay zany magno mizaly da ny firopahigna gnany mba mamozy anay amitiagny ny firopahigna satria da dimampolokoza magno firopahigna da miza zany da asany dimaina ny firopahigna da niakatra koa ny firopahigna za da telonjato ny firopahigna da sy voavidinay koa zany ndre ny firopahigna raika zany defa sy voavidinay da eva izany zany sady da tena majenjiragnasa iza hoe hoazagna efaranay raha sagnatria mbola mitohitohy tiky da hoarasagnany saky efaranay tony na ho faty misy aza ka da izay ny taragnanay abako
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.